0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GF9 AM। दिस टाइम चेक इज
2: भरोसा भी रफ्तार बैंक अलबी रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: و آخری شب حضور او در میان ما یا حسین از لبش نمی افت.
5: ارے سنو
6: رائٹ تو سب رائٹ کر دے گا نا
4: رضا همه ظاهران عاشقان همه سوگواران ملت شریف ایران فریاد بزنن یا حسین.
7: ईरान जो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई मुशहद ने मिटी माओ हवाले शहीद आयतुल्लाह खामनेई के हज़रत इमाम अली जे रोज़े जे आते में मिटी माओ हवाले कयो वयो। जनाज़े नमाज़ संदस पुट आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनेई शहीद सुप्रीम लीडर के आख़िरी मुशहद जे रोडन ते सुतली पयो। दर जहाज़ के पंहिंजे घेरे में मुशहद एयरपोर्ट ताईं पहुचायो। अरबा ॾियारे शहीद आयतुल्लाह खामनेई जो मढ़ करबला में हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्बास अलमदार ऐं हज़रत अली करमला वजह जे रोज़े ते नियो वियो। इराक में 1 करोड़ खां वधीक माण्हू ईरान जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अॼु हुर्म हज़रत मासूमा में शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी ताज़ियती इजतमा में शिरकत कंदो। ताज़ियती इजतमा मगरिब ऐं इशा जी नमाज़ बाद थींदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां टेलीफोनिक राब्तो। खिते जी ताज़ी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ईरानी परॾेही वज़ारत मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अमेरिकी हमलनि जी मज़म्मत कई। अमेरिका हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते शुरू करे छॾिया। 3 ॾींहं बि लगातार बमबारीअ जो सिलसिलो जारी। ईरान जा शहर कोनार्क जो दादक बोशहर ऐं बंदर अब्बास धमाकनि सां गूंजी थिया। परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि 14 में 6 धमाकनि जा वाक़िआ थिया। बंदर अब्बास में बि ज़ोरदार धमाका। अमेरिकी हान जा अमेरिकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया जो चवण आहे त कतर बहरीन ऐं कुवैत में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दीअ में ओभर वारो पाड़ेसी मुल्क मुलविस आहे। दहशतगर्दीअ में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। फितने खे ख़तम कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कोटिया में नेशनल एक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटीअ जे इजलास खे ख़िताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बलूचिस्तान जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर समेत ॿियनि इख़्तियारनि जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ खे बलूचिस्तान जे सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास खे ख़िताब कंदे शहबाज़ शरीफ चयो त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त बलूचिस्तान में आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जारी रहंदी। पाकिस्तान जे हथियार बंद फ़ौज जे आफ़ीसरनि ऐं जवाननि मुल्क जी दिफ़ा लाइ लाज़वाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि। सियासी ऐं अस्करी क़यादत जो अहम अज़म आहे त असांखे मुल्क मां दहशतगर्दी जो ख़ात्मो करणो आहे ऐं दहशतगर्दी जे फितने जी मुकमिल ख़ात्मे लाइ समूरा वसीला क़दम आंदा वेंदा।

भारत सिंतास मुहिदो फौरी तौर बहाल करे पानी के हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून की भंज कड़ी है। नायब वजीर आजम एसाफ डार की क्रोशियन परदेही वजीर सां गड प्रेस कॉन्फ्रेंस एसाफ डार ईरान इसराइल छिकताण घटाण लाए पाकिस्तान किरदार अदा कयो क्रोशिया सां बतरफी व्यापार की आजियां कयूं था। क्रोशियन परदेही वजीर बिन्हीं मुल्क लागापा गडियल एतराम एतमाद की बुनियाद बधल बिन्हीं मुल्क सहकार जा नवा मौका गोल्हण से भी इतफाक किया है।

0: खारेजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में संगावती तकरार सां झेड़ो फायरिंग में हिक ई घर जे चइनि भातियुनि सां कतल हिकु बारड़े समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मो मंद वारे इलाइक़े में झेड़े लॻण सबबि हिक ई घर जो फतेह मोहम्मद संदसि पुट राजा भाइटी राबिया ऐं भेण जीजा क़तल थी वयूं। गोलियूं लॻण सबबि सोराब नारे जो बि मारिजी वियो। मारिजी वियलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी जो ऐं बारड़ो अली रज़ा नारे जो इस्पताल मुंतकिल। धुरियुनि में चिकताण बरक़रार। वरे वज़ीर ऐं सूबाई घरू वज़ीर पारां वाक़े जो नोटिस वठी रिपोर्ट तलब करे वरिती।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज 91.।
3: असाबी दर्द क्लीफ
4: कमर से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा।
4: फकीरी दर्द के साथ,
3: जी हाँ,
4: फकीश
3: फटा जगह पर आसानी से जज्ब होकर पहुँचाने में मदद देता है।
4: असाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी दर्द,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: आवाज बदलता रहो।
1: धरती से जुड़ा है कल शहबाज,
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

तुझो ना बाजब यो डई मगा कुजाड़ो। अस्सलाम वालेकुम लाइव स्टूडियो मां इसके भरो सलाम खुश आयो ठीक अवां प्यारन इहा ई दुआ हूंदी आहे जिते बि हुजो खुश हुजो कॾहिं ॾुखियो हो ॾींहुं ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे मुस्कराईंदा रहो आमीन। साईं मुंहिंजा अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे ऐं जुलाई महीने जी ॾहीं तारीख़ ऐं हिन वक़्तु पंहिंजो जेको वक़्तु थिए पियो असांजे स्टूडियो जे घड़ियाल में त 9 मिंट ऐं अवां सां गुफ़्तगू कंदासीं ठीक 11 वॻे ताईं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो त वरी पाण सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि कंदासीं अवां खे ख़ूबसूरत मौसीक़ी जा आइटम बि ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हां गॾु हूंदव। साईं मुंहिंजा ज़हन में दिलि में हिकड़ा लफ़्ज़ हिकड़ी ॻाल्हि माउ जी ख़िदमत करण सां जनत मिलंदी आहे। अहसान जे हक़दार सभु रिश्तनि खां वधीक माउ आहे जंहिंजी हिकु घड़ीअ जो बि असां पाण अहसान नथा लाहे सघूं। माउ जी ख़िदमत करण सां उमिरि ऐं रिज़्क़ में बि चवंदा आहिनि त बरकत थींदी आहे ऐं हयातीअ जा समूरा डुख ख़तम थी वेंदा आहिनि। माउ खे प्यार मोहबत आज़ीज़ी इनकसारी जवाब मिलंदो आहे। वालदे सलूक सां पेश असांजी औलाद बि असां सां सुठो सलूक कंदी। वालदेन लाइ मेहनत करणु सवाबु वालदेन जी ख़िदमत करणु जिहाद खां बि वधीक जज़्बो आहे। वालदेन सां सुहिणो वर्ताव करण सां दुनिया जा समूरा बंद रस्ता बि खुली वेंदा आहिनि ऐं मंज़िल बि आसान थी वेंदी आहे।

असां अहिड़ा अमल कयासीं त उहे ॾींहं परे न आहिनि जो असांजा विञल समूरा असासा आसानीअ सां हासिल करे सघनि। ऐं साईं जा पाण सभिनी खे गॾिजी पंहिंजे असासनि जी पाण मालिकी करणी आहे, उन्हनि जा सचा पचा वारस बणिजो, छो त जेको घर आहे उहो सुकून आहे। तव्हां दुनिया जी कहिड़ी बि कुंड वञो ऐं किथे बि थकिजी अचो ड्यूटीअ खां, पोरे खां, धंधे कारोबार खां, जॾहिं इंसान घर में अचे थो, पंहिंजे बजड़नि सां मिले थो, त इन जहिड़ो को सुकून ई कोन्हे।

GFM Pod. दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ।

जेकॾहिं असां बि पंहिंजी दोस्तीअ जे हल्के में पाण खे अहिड़ी अहमियत ॾियण जी ख़्वाहिश रखूं था त असांजी ॿिया दोस्त इज़त कनि, त असांखे बि पंहिंजे दोस्त खे सचीअ दिलि सां मोहबत ॾियणु खपे, इज़त ॾियणु खपे ऐं पंहिंजे सचे जज़्बे सां ईमानदारीअ सां असां उनखे बि अहमियत ॾियूं। ईअं न आहे त असां पाण इज़त जा क़ाइल रहूं, असांखे इज़त मिले, मोहबत मिले ऐं पाण वरी पंहिंजे दोस्तनि खे पाण नज़रअंदाज़ करे छॾियूं, पोइ नटाइण बि लॻूं, लवाइण बि ऐं उन जा अहिड़ा ठाह ठाहियूं ऐं चवंदा आहिनि त दिलि खोटी त उज़ुर घणा। अहिड़ो अमल सचे दोस्त वारो अमल न आहे। अफ़सोस सां चवणो पवे थो त असां अॼुकल्ह दोस्तीअ खे घटि पर पंहिंजे मुफ़ादनि खे वधीक अहमियत ॾियूं था, जंहिंमें कंहिं बि क़िस्म जो कॾहिं बि कमु पवे थो त जल्द ऐं मुफ़्त में कयूं था, पर अहिड़े माण्हू सां दोस्ती रखण में देरि कोन था कयूं। अहिड़े माण्हूअ जे रुसी वञण ते बि पंहिंजो आराम फिटी वेंदो आहे, जंहिंमें असांजो कमु हूंदो आहे, मक़सदु हूंदो आहे, मुफ़ाद हूंदो आहे, पर जेकॾहिं असांजो दोस्त अहिड़ो पहिरीं प्यारो कावड़जी वेंदो आहे, रुसी वेंदो आहे, त पाण उन खे वरी परचाईंदा आहियूं त असांजो शल उन में कमु आहे ऐं शल देर न थिए। पर दोस्त जॾहिं परचण वारो न हूंदो आहे त उहो अहिड़ी ॻाल्हि कंदो आहे त तव्हां दोस्तीअ में परचण में देर कई ऐं असां वरी जेको आहे सो दोस्ती कंहिं ॿिए सां रखी आहे ऐं असां दिलि खपाए छॾी आहे पर बयान बि असां वठी छॾियो आहे।

0: अक्षर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 10 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक Al Habib, भरोसे का.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर.
5: जी रोजे जी आते में मिट्टी माव हवाले कह बो लखे माण्हुनि जी शिरकत. शहीद आयतुल्ला खमेनी जो मड़ इराक खां ईरान आंदो वियो. ईरानी हवाई फ़ौज वेढ़ाक जहाज़नि मड़ खणी वेंदड़ जहाज़ बार यारे शलमदार लाॾियो वियो. जनाज़े में शिरकत कई.
6: ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खानरत मासूम आयतुल्ला खमेनी जी ताज़े तेज़ इज्तिमा में शिरकत कंदो. ताज़े तेज़ इज्तिमा मगरिब ऐं इशा जी नमाज़ बाद थींदो.
5: سراکچی جو فیلڈ مارشل سراج منیر سے ٹیلیفونک رابطہ کھیتی صورتحال کے خیالن کی دے وٹ ایرانی پٹی وزارت موجب ایرانی پٹ گئی.

0: मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दी मुल्क मुलविस आहे। दहशतगर्दी में अफगान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। सभई गॾिजी फितने खे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान जे सूबाई एपेक्स कमेटीअ जे इजलास खे ख़िताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बलूचिस्तान जे गवर्नर समेत ॿियनि शिरकत। वज़ीर आज़म खे बलूचिस्तान जे सर्दी ख़िलाफ़ ऑपरेशन्स ते ब्रीफिंग ॾेई ॾिनी वई। ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त बलूचिस्तान में आख़िरी ख़ात्मे ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जारी रहंदी। पाकिस्तान जे हथियार बसरनि ऐं जवाननि मुल्क जे दिफ़ा लाइ लाज़वाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि। सियासी ऐं अस्करी क़यादत खे मुल्क मां दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो करणो आहे ऐं दहशतगर्दी जे फितने जी मुकमिल ख़ात्मे लाइ समूरा वसीला क़तब आंदा वेंदा।
1: भारत सिंध माहिदो फौरी तौर ते बहाल करे पाणी खे हथियार तौर आज़म इसाक डार जी क्रोएशियन पार्टी वज़ीर सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक डार चयो त ईरान इसराइल चिकटाण घटाइण लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कयो ऐं क्रोएशिया सां बदतरफ़ी वापार जी आजियां कयूं था। क्रोएशियन पार्टी वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा गॾियल एतराम एतमाद जे बुनियाद ते ॿधल आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मौका ॻोल्हण ते बि इतफ़ाक़ कयो आहे।

0: पीर जो घोट भर सा नारे जा बिरादरी जे बिन धुरिन में संगावती तकरार ता झेड़ो फायरिंग में एक ही घर जे चैन भातिन समेत पंज जना कतल एक बारड़े समेत ब जना जख्मी कचे जे फेज मोहम्मद वारे इलाके में झेड़े दौरान गोलियों लगण सबब एक ही घर जो फतेह मोहम्मद संदस पुट राजा भाइटी राबिया ए भेण जीजा कतल थी व्यू गोलियों लगण सबब सोराब नारे जो भी मारजी वो मारजी वालन जा लाश ए जख्मी ईदन नारे जो ए बारड़ो अली रजा नारे जो धुरिन में पारा वाके जो नोटिस रिपोर्ट तलब करे वरती।
1: आज सुबह हमारी जमीनों पर ट्रैक्टर चल रहे थे जिस पर इन वैशियों कातलों दरिंदों मुर्तजा चांदे सिकंदर चांदे तकरीबन 10 हथियारबंदों ने अंधाधुंध फायरिंग करके ट्रिपल मर्डर के आज चांदे मेरे कजन से सवाल करती हूँ सबका जिम्मेदार कौन है। मैं आईजी साहब से मैं हायर अथॉरिटीज से अपील करती हूँ कि हम कानून और आईन के आज से एक जंग लड़ रहे हैं और पहले भी हमने अपने तीन प्यारों के जना देखा है, आज मेरे नौजवान कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इस सबका जिम्मेदार कौन है? सिंध पुलिस का इसमें मंत्री रवैया, सिंध पुलिस का इसमें दमदारी वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आईजी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इस पर नजरसानी करें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले को रोका जाए। हमारी जान हमारे गांव में आज फायरिंग करके हमारे नौजवान कजन को कत्ल कर दिया गया।
2: बिंदुन में जड़े दौरान नौजवान सोट कतल जुड़े कतल केस में बरी थे जवाबदार मुर्तजा चांडियो समेत 12 जवाब चांडियो जुड़े कतल केस चौथों मानू कतल किया वो मुर्तजा चांडियो सिकंदर चांडियो ए बिन जमीन से कम कंदड़ सोट रियाज के कतल किया है। जवाबदार समझनता जुड़े कतल केस में बरी थे बाद कानून खेन कुछ भी कतल थल रियाज चांडियो के भाव एहसान चांडियो की फरियाद से मुर्तजा चांडियो अब्दुल सत्तार चांडियो सिकंदर चांडियो जुल्फकार चांडियो समेत 12 पुलिस चयन जवाबदार गिरफ्तार कर वरतो।
3: नेटवर्क तो मटियारी की है सुनते
4: फटलती इन्फेक्शन से बेहतरीन जरिया है
5: नीम पिकली हीट सॉप
4: जल्दी एफिड है
5: नीम पिकली हीट
4: चूड़ियों चायों की महासों हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीट सॉप ठंडक का बेहतरीन एहसास हजरत

0: निखार
1: हीट सोप
0: इसे साफ करने से तहफ़ फराम करने की वजह से होने खारिश और बदबू को कम करता है। फकीरी हीट सोप
1: हर अच्छे लेकर तलब
2: जो आवाज़ गीत जो आवाज़ ये हैदराबाद मटियारी सिंध जो आवाज़।

0: जिंदगी की लय
1: नेटवर्क जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

समय वापस अची चुको आयो मां जो मेज़बान नेमत अल्लाह जुणे जो समुझा अखियूं जेकी कुझु ॾिसनि थियूं तन खे क़बूल कनि थियूं या रद ज़हन कंदो आहे। असांजी पूरी हयाती में के शयूं अहिड़ियूं बि साम्हूं ईंदियूं आहिनि जिन खे कल पसंदि कयो वियो या सुहिणियूं लॻंदियूं हुयूं से अॼु नथियूं उणनि ऐं कल जेके शयूं असां खे सुहिणियूं न पई लॻियूं से अॼु ख़ूबसूरत छो पियूं लॻनि। इन ई सवाल जो जवाब ही थी सघे थो त ॾिसण वक़्तु ज़हन जी कैफ़ियत कहिड़ी ख़ूबसूरत नाहे।

चंड बाबति कुझ न कुझ सोचींदा ज़रूर हूंदव त चंड असल में आहे छा। मां तव्हांखे थोरी चंड जो ॾींहुं राति ज़मीन जे ॾींहुं राति खां 14 दफ़ा वॾो आहे ऐं चंड ते ज़मीन जो पाछो मुकमिल चंड ग्रहण वक़्तु पवंदो आहे ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी चकर ॾियण वक़्तु 2000 मैल फी कलाक जी रफ़्तार सां हले थो ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी 27 ॾींहं 7 कलाक ऐं 43 मिंटनि में हिकु भेरो चकर ॾिए थो। साल में 13 भेरा चकर ॾींदो आहे ऐं चंड ऐं सिज विच में 9,27,72,000 मुफ़ासिलो आहे। चंड ज़मीन खां बि 2,29,857 मैल परे आहे ऐं चंड जो कतर बि 2,160 मैल आहे ऐं चंड जी रोशनी 1.33 सेकंडनि में धरतीअ ते पहुचे थी। त समीन पंहिंजो अवां ताईं चंड जे बारे में कुझु मालूमात पहुचाएसीं, पर शमन मीराली चंड जे हवाले सां कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे गॾिजी पिया ॿुधऊं।

0: साईं कुछ खबर अथव
1: छा थियो सोणी
0: बिंदियन खां सोलन
2: जोड़ों की तकलीफ
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स
2: जी हाँ
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
3: ये
2: मुतासरा जगह पर आसानी
3: दर्द
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है
3: आसाबी दर्द
2: गर्दन और कमर की तकलीफ
3: पट्ठों के खिंचाव
2: चोट पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
4: सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
6: ओ पिता जा पिताई पिता दे वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

जी हा समिन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जा नाला खणंदासीं जिन मेहनत करे इनबॉक्स में भी कुझु दोस्तनि नाला मोकिलिया आहिनि फेसबुक ते बि ऐं लाइव कॉल ज़रिए बि दोस्तनि जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं ऐं नाला आहिनि अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी, गॾु नूर मोहम्मद सोलंगी ऐं नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, वसीम जरवार बि मीरपुर ख़ासि खां फोन कई आहे ऐं खालिक लाशारी बि भाउ मीरपुर ख़ासि खां ऐं चनेसर भेण आज़ाद भेण मोरे खां, बरकत अली सांगी, हैदरी सदाकत अली सांगी, ॻोठ विकिया सांगी, शहज़ाद सुहारो शाह खां, खालिक जतोई मुहबत शाह, फारूक हैदर दादू खां। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। आसिफ पहंवर ऐं शबीर पहंवर उनड़ चौक लाड़काणे खां ऐं रेहाना खान बखर खां, हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद जीअंद रिंद जेकाबाद खां, राशिद आवाण मेरापुर खां फोन कई भाउ।

जी वॾी महिरबानी। कुर्बान अली ख़ासि के लिए ॻोठ झंडो मरी खां ऐं झंडे मरी खां पोड़ फोन कई अथई खां मलक मीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद इब्राहिम संदीलो ॻोठ खां मोहम्मद हारून संदीलो मोरो खां ऐं फतेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो ॻोठ सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां ऐं राजन कोरी लालचंद कोरी ॻोठ खां ऐं असमा मीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद शरीफ भुट्टो नादर भुट्टो बलोचिस्तान खां ऐं ॻोठ मोहम्मद मूसा बालादी खां शमीर बालादी आरिफ़ बालादी एजाज़ बालादी मेवो खान ऐं रज़ा बालादी ऐं भाउ जमाल कुंभार बि फेसबुक ते मैसेज कयो भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं ज़ाकिर चांडियो लाड़काणे खां तस्मीन ख़ूबसूरत नगमो आहे अव्हां दोस्तनि जे नाम।

जी हा समय नाहिद अख़्तर जे इन ख़ूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। हयाती रही तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूर थी मेज़बान नेमतुल्लाह।

0: सिफारसी सिफारती कोशिशूं तेज करे छॾियूं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एग्जिट्स मूजिब पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान चिकटान घटाइण एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि अमेरिकी ऐं ईरानी इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प बि ईरान सां मुकमिल नाहे।
1: टे ॾींहं ॿ ईरान ते बमबारी, ईरानी शहर कोणार्क सोगादक बोशर बंदर अब्बास ते मिज़ाइल हमबारी, ईरानी शहर कोणार्क सोगादक बोशर बंदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला। ईरान जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवण आहे त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो।

0: मारिजी विया। पुलिस मूजिब गुझी इतला ते गडियल ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन जे नतीजे में मारिजी विया दहशतगर्द जी पुलिस शहादत में मुलविस हुआ। वधीक जांच जारी आहे।
1: गुलाम शाह रोड टाउन जातल शख्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल। सकर शिकारपुर तां मंगी फ्लोर मिल लगण जातल शख्स जो लाश मिलियो। इतला ते लकी गुलाम शाह पुलिस लाश कयो। पुलिस ॿुधायो आहे त लाश आई जी मवाली
0: ते 2 लख रुपियनि जो सयो भुटो कायम सॼा दुकान खे समूरो सामान सड़ी वियो आहे।
2: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: आप जाओ कमर दर्द या सूजन से
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती है कलंदर लाल शहबाज
1: नहीं है आवाज,
0: जिए
1: की आवाज।
2: खिलाफ शर्त वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद में दिल है, हुरमत गम है रोया।

0: करने और गर्मी खाली घुमरियों प्रिकली हीट सॉप।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: क्योंकि मैं ग्रीन

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: ॾाढो सुठो
4: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

0: الحبيب بوسيكا.
1: पांच साल की वारंटी के साथ
2: रॉयल जिंदगी भर का।

0: विञाए वेठो। लखी गुलाम शाह वेझो सखर रोड ताण ॼातल शख्स जो लाश हथ इस्पताल मुंतकिल। पुलिस चयो आहे त लाश आइस जे मवाली जो लॻी रहियो आहे।
1: चुल में प्रिया कुमारी समेत अख़बार थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ जस्कम जी रैली। जस्कम काकुड़नि नमरोटी चौक खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। अॻवाणनि जो त अख़बार थियल ॿारनि जी बाज़ियाब न थियण हुकूमत जी नाकामी आहे। प्रिया कुमारी ऐं फज़ीला सरकी जे वारसनि जो रहियार नाहे।
0: वेझो आटोस जे दुकान खे बाहि, लखे रुपियनि जो सामान सड़ी रख थी वियो। भुटो चौक ते लाखो जे दुकान खे समूरो सामान खाक। दुकानदार जो चवणु आहे त दुकान में पयल 12 लख रुपया रोक ऐं लखे रुपियनि जो सामान पिण सड़ी वियो आहे। नोटिस वठी वहार कई वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, उधर ना रहो।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं 3FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मुअसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियार
1: GFM 91.6
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: ईरान जो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जो मढ़ मस्जिद में मिट्टी माव हवाले शहीद अली खमेनी के हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में मिट्टी माव हवाले कयो वियो जनाज़े नमाज न सपुट आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खमेनी पढ़ाई शहीद की तदफीन में हज़ारे माण्हू शरीक थिया ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खमेनी शहीद आयतुल्लाह खमेनी की ताज़ियती मिड़ाके में शिरकत कंदो ताज़ियती मिड़ाको मगरिब ऐं इशा जो नमाज बाद थींदो
6: ईरान जी कवे ते हमलन बाद पाकिस्तान

0: लाड़काणे में वकीलन जी कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दन ए तदरसी अमले के तशद जो निशानो पाने वाले वाक्य खिलाफ रैली आमरली सौ एडवोकेट रफीक अहमद अबड़ो बेन मीडिया के बुरा एक सियासी जमायत 50 साल का कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दन के तंग कर रही है।
1: ठुल में प्रिया कुमारी समेत अगवा थे बालन की बाजियाबी लाए जसकम की रैली जसकम कारकुन नमरोटी चौक का प्रेस क्लब ती रैली कढ़ी अगवाण अगवा थे बालन जो बाजियाब न थियण हुकूमत के नाकामी है। प्रिया कुमारी ए फजीला सरकी के वारसन जो रड़ियों भी बुधण लाय तैयार न है।
2: सोलर बैटरी ते डायरेक्ट
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सबसे
5: इट्स सॉप
6: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप
6: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम पिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
7: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
8: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM की आवाज
7: डीप नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: 30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जिजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
4: गर्दन और कमर की तकलीफ
5: पट्ठों के खिंचाव मोच
4: चोट पुराने जख्मों के दर्द
5: जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का
5: एंड
4: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: अमेरिका ईरान जे कवेती हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन साल्स मुल्कन सफारती कोशिशों तेज करे छड़ियो. अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एग्जेक्स मौजूद पाकिस्तान ए कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान सिकतान घटाने एटमी प्रोग्राम ते गालिन जी बहाली लाए कोशिशों करे रहा आयूं. बिन्हीं मुल्कन जे नुमाइंदन अमेरिकी ईरानी इख्तियारन सां भी गलायो आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प भी ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी नाहे.

गडियल अरब इमारतनि खे अमरीका सां सहकार जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती कमेटी जी मेंबर इस्माइल कोसरी चयो आहे त यूएई पंहिंजे क़दमनि सां पाण खे ईरान जे दुश्मन वारी फहिरिस्त में शामिल करे छॾियो आहे। यूएई खे ईरान जे दुश्मन सां गॾु बीहण जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी।

ईरान जो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अली खामनाई मुशहद में मिटी माओ हवाले शहीद अली खामनाई के हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में मिटी माओ हवाले किया वो जनाज़े नमाज संदस पुट आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनाई पढ़ाई शहीद के तदफीन में हज़ारे मानू शरीक थिया। ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी ताज़ेती मेड़ाके में शिरकत कंदो। ताज़ेती मेड़ाको मगरिब ऐं इशा जी नमाज़ बाद थींदो।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नून लीगी असेंबली मेंबर्स जी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म जे लीगी मेंबर्स के जी बी जा मसला हल करण जी खातिरी शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान जे अवाम सदाई पाकिस्तान वफ़ादारी जो अमले सबूत डि॒नो। गिलगित बल्तिस्तान जे तामीर ऐं तरक़ी अवलीन तरजीहनि में शामिल आहे।

0: trees shuffle the wind.
1: As the green revives its breath,
0: branches collide again.
2: जो आहे अदलिया जो नाहे अदालतूं पंहिंजे साम्हूं मौजूदु तकरार ताईं रहनि गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि वफ़ाक़ी आईनी अदालत नसला टावर खे ड्राहण जो सबबु बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम वापसि वठी छॾिया आईनी अदालत फ़ैसिले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकुम जारी कया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट्स ते कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बिना ड्राहण जा हुकुम नथा ॾेई सघजनि हर केस में मुनसिफ़ाणी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे अदालत जो मक़सदु रुगो कानून मूजिबि कार्रवाई यकीनी बणाइण आहे।

0: एक्वर्ड
1: चेक इस क्रीम जो डीप क्लीन करे
2: गुलाबी नीम सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर आवाज
1: 91.3 थ्री टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: बमबारी रानी शेर पार्क चौगा तक स्पोर्ट्स चार बंदर अब्बास से मिसाइली हमला ईरान जब अमरीकी रन से जवाबी हमला ईरानी मीडिया जोड़ा तो कतर बहरीन कुवैत में अमरीकी रन के निशानो बनाया वो
6: अमेरिका ईरान जे एक बेते हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन साल्स मुल्क सिफारती कोशिशों तेज करे छड़ी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एग्जिप्स मुल्क मौजूद पाकिस्तान ए कतर समेत साल्स घटाने एटमी प्रोग्राम ते गालिन जी बहाली लाए कोशिशों करे रहा हैं। बिन्हीं मुल्कन जे नुमाइंदन अमेरिकी ए ईरानी इख्तियारिन सां भी गालायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प भी ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी नाहे।
5: गडियल अरबी भारतन के अमरीका से सहकार की कीमत अदा करनी पवी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के मेंबर इस्माइल कोसरी है तो यूएई पैं कदम से पान के ईरान के दुश्मन वाली फेहरिस्त में शामिल किया है। यूएई के ईरान के दुश्मन से गज बीहण की कड़ी कीमत अदा करनी पवी।
6: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान के नून लीगी असेंबली मेंबर्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के लीगी मेंबर्स के जेबी जा मसला हल करने की खातरी शहबाज शरीफ

0: त गिलगित बल्तिस्तान जी अवाम सदाई पाकिस्तान सां वफ़ादारीअ जो अमली सबूत ॾिनो। गिलगित बल्तिस्तान जी तामीर ऐं तरक़ी अवलीन तर्जीन में शामिल आहे।
1: गैर कानूनी डावतन ख़िलाफ़ कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आहे, अदलिया जो नाहे। अदालतूं पंहिंजे साम्हूं मौजूद तकरार ताईं रहनि, गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आईनी अदालत नसर टावर खे डाइण जो सबबु बणंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम वापसि वठी छॾिया। आईनी अदालत फैसले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकुम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट ते कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बिना डाइण जा हुकुम नथा ॾेई सघजनि। हर केस में मुनसफ़ानी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। अदालत जो मक़सदु रुगो कानून मूजिबि कार्रवाई यकीनी पाइण आहे। वज़ीर आला हाउस में चौमासी जे वसकारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन अक़मल मलिक एंटीओ इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक़ में चौमासी जे वसकारनि ऐं मुल्क खे मुंहुं ॾियण बाबति सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। एनडीए में ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातुनि जो इम्कान आहे। आबाशी वारे वज़ीर जा अमकान शुरू थियो त सिंध हुकूमत चौमासी बाबति तयारियूं करे वरितियूं आहिनि।
0: वॾनि शहरनि में नाइट पार्टीज़ वारे कल्चर सबबु एड्स पखेड़जी रही आहे। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो इंकशाफ़। सेनेट कमेटीअ खे आगाही ॾींदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स जे इस्तेमाल ऐं नौजवाननि जे जिन्सी सरगर्मियुनि सबबु HIV पखेड़जी रही आहे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 3 ॼणनि जा लाश। कंडियारे में हथियार बंद तां ज़ख़्मी थियल वापारी फौत। हैदराबाद जे इलाके पखी किले वेझो नामालूम शख़्स जो लाश मिलियो, सुञाणप न थी। लखी गुलाम शाह वेझो सकर रोड तां किले जो लाश, सुञाणप न थी। पीर जो गोड़ बरसा नौजवान जो लाश मिलियो, सुञाणप अब्दुल रहमान कलोड़ो जो नाले सां थी आहे। कंडियारो बरसा हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल वापारी नसीर कलोड़ो इस्पताल में फौत थी वियो, कारण मालूम न थियो।
0: खैरपुर भरसां जेड़े में क़तल थियल 5 ॼणनि जा लाश पुलिस वारसनि खे न ॾिना। सर्द खाने में पयल घोट इसाक नारेजो में मारिजी वियल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ऐं ॿियनि जी तदफीन न थी सघी। इंतिज़ामिया 2 औरतनि समेत 5 ॼणनि जा लाश सिविल इस्पताल जे सर्द खाने में रखाए छॾिया। जेड़े में मारिजी वियल 5 ॼणनि जा लाश वारसनि खे न मिलण ख़िलाफ़ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल। अदालत SSP खैरपुर, DSP पीर ॻोठ ऐं SHO फैज़ मोहम्मद खे तलब करे वरितो।
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मसला हल करण जी खातरी, शहबाज शरीफ चयो त गिलगित बल्तिस्तान जी अवाम सदाई पाकिस्तान सां वफादारीअ जो अमली सबूत डि॒नो। गिलगित बल्तिस्तान जे तामीर ऐं तरक़ी अवलीन तर्जन में शामिल आहे।
2: गैर क़ानूनी अदावतनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आहे, अदलिया जो न आहे। अदालतूं पंहिंजे साम्हूं मौजूदु तकरार ताईं रहनि, गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आइनी अदालत नसला टावर खे ढाहिण जो सबबु बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकम वापसि वठी छॾिया। आइनी अदालत फ़ैसिले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट ते क़ानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बिना ढाहिण जा हुकम नथा ॾेई सघजनि। हर क़िस्म जी मुनसफ़ानी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। अदालत जो मक़सदु रुगो क़ानून मूजिब कार्रवाई यकीन बणाइण आहे।
1: वज़ीर आला हाउस में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ऐं NDMA चेयरमैन जे इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड खे मुंहुं ॾियण बाबति सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। NDMA ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातनि जो इम्कान आहे। आपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त सिंध हुकूमत चौमासे बाबति तयारियूं कयूं आहिनि।
2: वॾनि शहरनि में नाइट पार्टीज़ वारो कल्चर सबबु एड्स पकड़जी रही आहे। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो इंकशाफ़। सीनेट कमेटी खे आगाही ॾींदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स जे इस्तेमाल ऐं नौजवाननि जे जिंसी सरगर्मियुनि सबबु HIV पकड़जी रही आहे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 3 ॼणनि जा लाश हथ। कंडियारे में हथियारबंदनि हथां ज़ख़्मी थियल वापारी फोत। हैदराबाद जे इलाइक़े पके किले वेझो नामालूम शख़्स जो लाश हथ। सुञाणप न थी सघी। लखी गुलाम शाह वेझो सखर रोड तां 1 ॼणे जो लाश हथ सुञाणप न थी सघी। पीर जो घोट भरिसां बि नौजवान जो लाश मिलियो। सुञाणप अब्दुल रहमान कलोड़ो जे नाले सां थी। कंडियारो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल वापारी नसीर कलोड़ो इस्पताल में फोत। कारण मालूम न थियो।
2: जयपुर भरिसां झेड़े में क़त्ल थियल 5 ॼणनि जा लाश पुलिस वारसनि खे न ॾिना। सरहद खाने में पयल घोट इसाक नारेजो में मारजीबल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ऐं ॿियनि जी तस्वीर न थी सघी। इंतिज़ामिया ॿिनि औरतुनि समेत 5 ॼणनि जा लाश सिविल अस्पताल जे सरहद खाने में रखाए छॾिया। झेड़े में मारजीबल 5 ॼणनि जा लाश वारसनि खे न मिलण खिलाफ़ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल। अदालत SSP खैरपुर, DSP पीरगोट ऐं SHO फैज़ मोहम्मद बंडू खे अदालत तलब करे वरितो।
1: मेहड़ वेझो उमेरोबाब चांडियो जे सोट जे क़त्ल बाद धुरियुनि में छिकताण। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पुलिस मुक़रर। धुरियूं पंहिंजनि ॻोठनि ताईं महदूद। वधीक 2 ॼणा गिरफ़्तार।
2: ठाठे में कांसकेली बिरादरी जे बिंदुनि में जहिड़ो 1 ॼणो क़त्ल, 13 ॼणा गिरफ़्तार। वापसनि जो लाश रखी ॾियणो। आमरी स्टाफ झेड़े दौरान गोली लॻण सबबु फिदा हुसैन कांसकेली मारिजी वियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार ऐं मक़तूल धुर वारा पाण में माइट आहिनि। कारण मालूम नाहे थी सघियो।
1: कोट गुलाम मोहम्मद लॻभॻि 2 निंगरियुनि सां ज़्यादती ऐं क़त्ल में मुलविस भूमे समेत 2 जवाबदार अदालत में पेश। अदालत ॿिन्ही जवाबदारनि खे 3 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। ॻोठ वागरेजी में प्रेमी कोली जे क़त्ल में मुलविस कांजी कोली खे मकामी अदालत में पेश कयो। पुलिस जो चवण आहे त केस जे हर रुख खां जांच करे रहिया आहियूं। गिरफ़्तार जवाबदारनि खां वधीक पुछा गाछा कई वेंदी। केस में अॻवाए ज़्यादतीअ जा कलम शामिल कया विया आहिनि।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिल एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली
1: आवाज, M88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे।
1: राज्य रिपोर्ट मुजिब अमरीकी अमलदारन वाज़े कयो आहे त हू हाणे ईरान ते फौजी हमला न करे रहिया आहिनि। ईरानी सरकारी टीवी मुजिब बंदरबास में धमाकनि जा आहिनि। बोशहर में बि धमाके जी आवाज़ फज़ाई जा हुआ। ॿियनि शहरनि में बि धमाकनि वधी सुप्रीम लीडर जे क़त्ल जो प्लान वरितो वेंदो। अमरीकी ऐं इसराइली क़यादत खे सज़ा मिलंदी। ईरानी पासा इंकलाब जे सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी चयो आहे त शहीद आयतुल्ला जे क़त्ल जी तारीख़ केर बि विसारे न सघंदो। ॿारनि जे क़ातिल अमरीकी फ़ौज खे मुनासिब सज़ा ॾियणु ज़रूरी आहे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

आसान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: स्पीकर रमेश कादर शाह की सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और गैंग मेंबर से शिरकत। स्पीकर रमेश कादर शाह चयो था जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 सैकड़ो मार्कू खणंदड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती कर अली चाइल्ड टीचर की टेस्ट पास कदड़ 500 छोकरियों के 15 डी अंदर ऑफर लेटर दिना विदा JEST और PST उम्मीदवार लाइ अदालती फैसलो अची वो है इन बाबत कानून वारे खाते से मुशावरत कई वेंदी तो उन थो कर सकते। सरदार शाह चयो था तालीम खाते के रोजगार नफर तालीम जो जरियो बढ़ाणो पवंदो। कमेटी फैसलो कयो आए तो GST और EST में फ्रेश ग्रेजुएशन के मौको दिनों वे।
2: क्या हम लोग किसी का घर मजबूर हो जाए? खुदा का वास्ता है, आप लोग खुद तो ख्याल करें। और बुरा मना तो जाते हमने फिर बुरा नहीं किया है, हमने
3: जिंदगी शऊर के बेवकूफ़ बढ़ाए मुसलसल असा के बेवकूफ़ बढ़ाए पे वे असा के बस तारीख के तारीख दिनी वे थी
4: गोरब के ना मन सीपी के ना मन रोड पे वेचा कर
5: बिन्दियों के अंदर इंशाला बिलावल हाउस पूरा अमन भरण में वेही रहा।
1: पार्लियामेंट्री कमेटी असा लाइ ठही इन में असो जिक्र ही न थो। कराची प्रेस क्लब बहरा धरणो हणी वेठल PST और GST की वेटिंग उम्मीदवार जो सख्त एहतजाज। केतरी ही नारियों KTN न्यूज से गाल बोल दौरान लुड़क लाड़े वेठियो। बिन डीह का बिलावल हाउस आड़ो धरणे जो चिताव। PST और GST

जे वेटिंग उम्मीदवारनि जो चवण आहे त कमेटी मां वॾियूं उमेदूं हुयूं पर सभिनी असांखे मायूस कयो। रुगो डटा ऐं तारीख़ मथां तारीख़ थींदी पई वञे। छा हाणे असां आबघात कयूं? बलोचिस्तान जे इलाइक़े ख़ुसाद में थाणे ते नाकाम हमले खां पोइ सिक्योरिटी फोर्सेस जे ऑपरेशन में वधीक 13 दहशतगर्द जनम भेड़ा। ऑपरेशन शवान दौरान मारिजी वियल खारजी दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 5 तक थी वियो। सिक्योरिटी ज़रिए मुजिबि 5 जुलाई खां पोइ शुरू कयल ऑपरेशन शवान ऐं ॿियूं कार्रवाइयुनि दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो मजमूई अंगु वधी 5 तक थी वियो आहे। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फज़ाई कार्रवाइयूं जारी आहिनि। ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जी सिफारती हल लाइ पुरज़म आहियूं, अमरीकी अमलदारनि जी दावा। अमरीकी पढ़ई मीडिया मूजिब तेहरान ऐं वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। एक्ज़ियूस मूजिब पाकिस्तान समेत 40 मुल्कनि बि चिपटाण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। 40 मुल्क एथमिक प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। अमरीका ईरान ते वधीक हमलनि जी तरतीब करे छॾी। अमरीकी अमलदारनि मूजिब ईरान ख़िलाफ़ फौजी कार्रवाई या मिसाइल हमला न आहिनि कया। अल जज़ीरा जी रिपोर्ट मूजिब अमरीकी अमलदारनि वाज़े कयो आहे त हू हाणे ईरान ते फौजी हमला न करे रहिया आहिनि। ईरानी सरकारी टीवी मूजिब बंदर अब्बास में धमाकनि जा इतला ग़लति आहिनि। बो शहर में बि धमाके जी आवाज़ फज़ाई दिफ़ाई निज़ाम जा हुआ। ॿियनि शहरनि में बि धमाकनि वारियूं ख़बरूं दुरुस्त न आहिनि। सुप्रीम लीडर जे क़तल जो प्लान वरितो वेंदो। अमरीकी ऐं इसराइली क़यादत खे सज़ा मिलंदी। ईरानी पासारनि ख़िलाफ़ जो सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी चयो आहे त शहीद आयतुल्ला जे क़तल जी तारीख़ केर बि विसारे न सघंदो। ॿारनि जे क़ातिल अमरीकी फौज सज़ा ॾियणु ज़रूरी आहे। ग़ैर क़ानूनी अॾावतनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौर सूबाई हुकूमत जो आहे, अदलिया जो नाहे। अदालतूं ग़ैर ज़रूरी मामलनि में दख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आईनी अदालत नसरा टावर खे ढहण जो सबबु बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम वापसि वठी छॾिया। आईनी अदालत फ़ैसिले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकुम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट ते क़ानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बिना ढहण जा हुकुम नथा ॾेई सघजनि। हर केस में मुंसिफ़ानी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। वज़ीर हाउस में चौमासी जे वस्तारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ऐं एनडीएमए चेयरमैन जी बि इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक़ में चौमासी जे वस्तारनि ऐं बोर्ड खे मुंहुं ॾियण बाबति सरकार वधाइण जो इतफ़ाक़। एनडीएमए ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातनि जो इम्कान आहे। आबपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त सिंध हुकूमत चौमासी बाबति तयारियूं कयूं आहिनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, फैम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी,
3: ये yeah!

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: जाने।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे
2: जितनी बच्चियां पास हुई हैं 500 के करीब, जो हमारी बच्चियां अभी पास हुई हैं, इनको विद इन 15 डेज ऑफर ऑर्डर्स दिए जाएं विद इन 15 डेज। और तीसरा जो इशू था, जो मेन इशू था, जेएसटी, जेडीएसटी और पीएसटी वाला, जिसके हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी, उस पर बहुत डिस्कशन हुई। उस पर एक कोर्ट का केस आ गया है जिसकी वजह से कमेटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस कोर्ट के केस का ओपिनियन ले लें लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि लॉ मेकर्स जो इस असेंबली में बैठते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन पे ये फर्ज होता है कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो उसको माने।
3: मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है, रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक की राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। और फ्यूचर में अगर तालीम को ठीक करना है तो ये मसाइल आज हम नहीं होंगे, कल उसके सामने जब खड़े आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों।
4: सिंध में स्वातंत्री भर्तियुनि बाबति जोड़ियल पार्लिमानी कमेटी जूनियर स्कूल टीचर्स लाइ 55 सैकड़ो मार्क्स खणंदड़ समूरनि उम्मीदवारनि खे भर्ती करण जो फैसलो करे वरितो। अर्ली चाइल्ड टीचर्स जी भर्तियुनि में छोकिरियुनि खे अवलियत ॾियण जो फैसलो, पीएसटी ऐं जीएसटी जी वेटिंग उम्मीदवारनि जे मुस्तक़बिल बाबति को फैसलो न थी सघियो। स्पीकर अवेश कादिर शाह जी सदारत हेठि इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ऐं ॿियनि मेम्बर्स जी शिरकत। स्पीकर अवेश कादिर शाह चयो त जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 सैकड़ो मार्कूं खणंदड़ समूरनि उम्मीदवारनि खे भर्ती कयो वेंदो। अर्ली चाइल्ड टीचर जी टेस्ट पास कंदड़ 500 छोकिरियुनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर लेटर ॾिना वेंदा। जीएसटी ऐं पीएसटी उम्मीदवारनि लाइ अदालती फैसलो अची वियो आहे, हुन बाबति कानून वारे खाते सां मुशावरत कई वेंदी त हुन लाइ छा थो करे सघिजे। सरदार शाह चयो त तालीम खाते खे रोज़गार न पर तालीम जो ज़रियो बणाइणो पवंदो। कमेटी फैसलो कयो आहे त जीएसटी ऐं पीएसटी में फ्रेश ग्रेजुएट्स खे मौको ॾिनो वञे।

0: फिर हम क्या वो करें? क्या हम लोग कुछ किसी जगह मजबूर हो जाए? खुदा का वास्ता है, आप लोग खुद को ख्याल करें। और फिर हमारे सुधार से हमने कुछ मिला नहीं किया है।
1: सिंध के शऊर के बेवकूफ़ बढ़ाया मुसलसल असा के बेवकूफ़ बढ़ाया पे।

पार्लियामेंट कमेटी असा लाइ ठही इन में असो जिक्र ही न थियो। रांची प्रेस क्लब बहरा धरणो हणी वेठल बीएसटी ए जीएसटी के वेटिंग उम्मीदवार को सख्त एहतजाज। केतरी नारियों केटीएन न्यूज से गाल बोल दौरान लुटक लाड़े वेठी हूं। बिन डीह बिलावल हाउस अड़ो धरने जो चेताव। पीएसटी ए जीएसटी के वेटिंग उम्मीदवार को चवण हो कमेटी में वडी उम्मीद हुई पर सभी असा मायूस कर रुगो डटा तारीख मथा तारीख डिनी पी वे हाँ अस आपघात क्यों ईरान सा टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन मसले के सिफारती हल लाए पुरजमायू अमरीकी अमलदारन के दावा। अमरीकी परडेही मीडिया मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन। एक्ज्यूस मूजिब पाकिस्तान समेत 40 मुल्क भी चिकताण के खात्मे लाए कोशिश तेज कर 40 मुल्क एटमी प्रोग्राम से गालियन की बहाली लाए कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान से मुकम्मल जंग जो हामी ना है। अमरीका ईरान से वधिक हमलन की तरदीद कर छी। अमरीकी अमलदारन मूजिब ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई या मिसाइल हमला नाहन किया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट मूजिब अमरीकी अमलदारन वाज़ह किया है त हू हाणे ईरान से फौजी हमला न करे रहा है। ईरानी सरकारी टीवी मूजिब बंदर अब्बास में धमाकन का इतला गलत आन। वो शहर में भी धमाके की आवाज फजाई दिफाई निज़ाम जो हुआ। बेन शहर में भी धमाकन वाली खबरों दुरुस्त आन। सुप्रीम लीडर के कतल जो प्लान वरतो वेंदो। अमरीकी ए इसराइली क्यादत के सजा मिली। ईरानी पासरन खिलाफ जिजन बराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी है त शहीद आयतुल्ला खामनाई के कतल की तारीख केर भी विसारे न सको। बारन के कातिल अमरीकी फौज के भी मुनासिब सजा देण जरूरी है। गैर कानूनी अदावत खिलाफ कार्रवाई जो अख्तियार बुनियादी तौर सूबाई हुकूमत जो है अदलिया जो ना है। अदालतों गैर जरूरी मामलों में मुदाखलत न कन। वफाकी आईनी अदालत नस्ला टावर के डायण जो सबब बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस वी छा। आईनी अदालत फैसले में सुप्रीम कोर्ट दायरे का अगत वा हुक्म जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट से कानूनी घुर्जू पूरी कर बिना डायण का हुक्म नथा रही सकजन। हर केस में मुंसिपाणी कार्रवाई सभी जो हक है। बजला हाउस में चौमासी दिवस कारण में बोर्ड बाबत इजलास वफाकी वजीर सदक मलिक एनटीएम चेयरमैन जी भी इजलास में शिरकत। सिंध ए वफाक में चौमासी दिवस कारण ए बोर्ड के मुंह डेण बाबत सहकार वधायण के इतफाक। एनटीएम ने ब्रीफिंग डींदे बुधायो त 15 जुलाई का 30 अगस्त ताई मामूल का वधीक गर्मी ए बरसातन जो इम्कान है। आबपाशी वाले वजीर जमखान शोरो चयो त सिंध हुकूमत चौमासी बाबत तैयारियों कयूं आहिनि। वन शहर में नाइट पार्टीज वे कल्चर सबब एड्स पकड़ी रही है। सेहत वे वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल इंतजाम सेनेट कमेटी की आगाही डींदे वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल नाइट पार्टीज में ड्रग्स के इस्तेमाल ए नौजवानों की जिन्सी सरगर्मियों सबब एचआईवी पकड़ी रही है। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में थायल लिंगरी जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारिसन हवाले। पुलिस ट्यूशन सेंटर के मालिक की बिन धीरन समेत तीन जन की हिरासत में वी छो। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट मूजिब लिंगरी की गिची से रस्सी जहा निशान आन। हतमी रिपोर्ट बाद खबर पवी। बीजो वोट वेझो नारेदा बिरादरी की बिन धुरियन में जड़े दौरान मारजी वेल पंज जणन जा लाश 26 कलाकन बाद वारिसन हवाले। जीजा खातून राबिया फतेह मोहम्मद राजा ए सोहराब नारे जा लाश 26 कलाकन बाद वारिसन हवाले किया गया। घोट साख नारे जो में पंज जणन के कतल बाद धुरियन में चिकताण वाली सूरतयाल बरकरार। इलाके में कोर्ट पकड़ियल। मेहड़ वेझो में रुबाब चांडियो के सोट के कतल बाद धुरियन में चिकताण धुरियों पेंशन गोटन ताई महदूद पुलिस चैन जवाबदार ने गिरफ्तार कर वरतो। प्रिया कुमारी समेत बेन मगवी बारन की बाजाबी लाइ बबरलो बाईपास वट धरणो जारी। सिंध के बेन शहरन में भी एहतजाज मुजाहरा। जस्कम शहीद बशीर खान ग्रुप जो अगवान डॉक्टर न्यास कालानी भी बबरलो वट कायम एहतजाजी कैम्प से पहुंचो। गोटकी में जस्कम तरफा प्रेस क्लब अगर बुक
پڑتال کیمپ کا سکرنٹ میں قومی عوامی تحریک پارا اسٹیشن روڈ کا سینما چوک تائیں ریلی کڈی گئی دھاتو میں بارن جی بازیا بلائے پیدل مارچ سمرن بارن کے فوری بازیا کرنے کا مطالبہ

कटे में कासली बिरादरी जी बिन दुरियन में के खिलाफ टिकटॉक ठहण वाले मामले ते जेड़ो फायरिंग में किरणो कतल वारिसन जो लाश रखी दणो अमरी स्टाफ ते छेड़े दौरान गोली लगन सबब फिदा हुसैन कासली मारजी वियो। पुलिस मुख्य जवाबदार सदाम कासली समेत टिन जवाबदार की गिरफ्तार करे वरितो। महंगाई ऐं कंदकोट कश्मोर ऐं ॿियनि शहरनि में जमात इस्लामी कारकुननि एहतजाज कयो। मुज़ाहिन चयो त आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियो आहे, पोइ बि हुकूमत अवाम खे लीफ ॾियण लाइ तयारु न आहे। पेट्रोल वधीक सस्तो कयो वञे मेहर में घर मां दाड़े जो जेको टे जवाबदार ॾोही करार 82 लख रुपया ॾिनो करार। मदीना कॉलोनी में नुसरत ऐं फिदा हुसैन पवर जे घर में लॻल दाड़े जो जेको गुलाम रसूल चांडियो कयो। फासले में फराज़ मुर्ज़ा पवर ऐं ज़हीर कोलाची ॾोही करार, टिनी ॼणनि ते 82 लख रुपया ॾंड लॻाए वियो। कुर्तियल ज़ेवरनि जो 30 लख ऐं बेवाजबी जो 52 लख ॾंड विधो हुयो। जवाबदार मुतासिर वटि मेड़ पिण वठी वेंदा। गर्दाणी औरत नुसरत जी ॾेराणी सहमा पवर ॾोह कराइण जो इतराफ़ कयो।

0: मां इन्हें मानों दिल पैदा कराया, इन्हें दुनिया दिल पैदा कराया।
1: जिनजे नाले वारे फनकार तुफेल संदराणी की तबियत में बेहतरी, तुफेल संदराणी अस्पताल में वीडियो बयान जारी कर दवाओं के मदान जा थोरा मनिया गीत सोना लगत अली वाला भी चुंगारियो। तुफेल संदराणी के टे ढी के दिल जो दौरो पवन सबब कराची जी डाओ अस्पताल दाखिल थे हो। स्पेन में सख्त गर्मी बाद बेले के लगल बाहर जब्तो आंदो हो, 12 जड़न के सड़ी फोत थियण की तस्दीक 19 जणा कौन। सूबे अल्गेरिया के बेलन में लगल बाहर सबब समय घर भी सड़ी रखती व्या। अख्तियार मूजिब सड़ी फोत थियण में 4 बरतानवी शहरी भी शामिल थी सकंदा, वधिक जांच जारी है। खलाई रॉकेट की दुनिया में चीन की वही कामयाबी, अमरीकी कंपनी के इस्तेमाल कल रॉकेट की वापसी वाली बढ़तरी खत्म। चीन में इस्तेमाल कल रॉकेट की वापस लैंड करण में कामयाब, चीनी हुकूमत इस्तेमाल कल रॉकेट की कामयाब लैंडिंग वाली वीडियो जारी कर सकी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, जो मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: गम।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खाने को ढूंढना चाहता है, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.3।

0: 6 सुनते जो आवाज उतरना रहो उतरना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो
2: जाऊंगी। उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछा लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर रुकूंगी, सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: आशा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: बलोचिस्तान में पाक फौज, एफसी ऐं पुलिस जो दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन शाबान जारी। 24 कलाकनि दौरान वधीक 17 दहशतगर्द मारिजी विया। 5 ॾींहनि दौरान मारिजी वियलनि जो अंग 69 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब 5 जुलाई खां शुरू कयल ऑपरेशन शाबान ऐं ॿियनि कार्यवाहियुनि में मजमूई तौर 69 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फज़ाई कार्यवाहियूं जारी आहिनि। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। सदर आसिफ़ अली ज़रद

0: और एजुकेशन है कि पास हुई है करीब ऑफर ऑर्डर में बैठते हैं जो कानून बनाते हैं उन पे ये फर्ज होता है कोई डिसीजन आए तो उसको मान।
1: मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक की राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से हैं पास होके उन टीचर क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें ऑप्शन करना है तो ये मसाइल जब खड़े अच्छे हमसे सवाल फैसला क्यों।
2: सिंध में उस्तादन की भर्तियों बाबत जोड़ियल पार्लियामानी कमेटी जो जूनियर स्कूल टीचर्स लाए 55 सेक्टर के भर्ती कर छोकर के अवलियत जे वेटिंग उम्मीदवार के मुस्तकिल बाबत को फैसलो न थी सको। स्पीकर अवैस कादर हेठ इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुशी बेन मेंबर्स की शिरकत। स्पीकर अवैस कादर शाह जूनियर साइंस टीचर लाए 55 सैकड़ों मार्कू खड़ समूरन उम्मीदवार के भर्ती कर वो अर्ली चाइल्ड टीचर के टेस्ट पास कदर 500 छोकरियों के 15 दिन अंदर ऑफर लेटर डिना वा जीएसटी ए पीएसटी उम्मीदवार लाए अदालती फैसलो कानून वारे खाते से मुशावत कई वो पढ़ाण मौको दिनों
3: आप सुन रहे थे GAFM न्यूज
4: धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खत्ते की बनी है आवाज
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।